भर्ना खुल्यो गण्डकी प्रदेशको एक अग्रणी उच्च शैक्षिक सामुदायिक संस्था QAA मान्यता प्राप्त आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस दमौली तनहुँमा शैक्षिक सत्र 2083-84 को लागि वार्षिक सेमेस्टर प्रणाली तर्फ बीए बीबीएस र बीएड नेपाली अङ्ग्रेजी गणित र विज्ञान र सेमेस्टर प्रणाली तर्फ बीबीए र बीआईसीटी मा अध्ययन गर्न चाहने इच्छुक विद्यार्थीहरूले समयमा नै प्रवेश परीक्षा इन्ट्रान्स फार्म भरी आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नु हुन सूचित गरिन्छ। बीबीए को प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने मिति 2083 श्रावण 19 गते सम्म। बीबीए को प्रवेश परीक्षा मिति 2083 श्रावण 23 गते बिहान 8 बजे। बीबीए को कक्षा सञ्चालन त्रिवि अनुसार। बीबीए को जम्मा सिट संख्या 66 जना। बीआईसीटी को प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने मिति 2083 श्रावण 25 गते सम्म। बीआईसीटी को प्रवेश परीक्षा मिति 2083 भाद्र 5 गते दिउँसो 1 बजे। बीआईसीटी को कक्षा सञ्चालन 2083 भाद्र 31 गते देखि। बीआईसीटी को जम्मा सिट संख्या 33 जना। बीए बीबीएस र बीएड को प्रवेश परीक्षा फारम 2083 असार 24 गते सम्म। बीए बीबीएस र बीएड को प्रवेश परीक्षा 2083 असार 25 गते बिहान 8 बजे। बीए बीबीएस र बीएड को कक्षा सञ्चालन 2083 श्रावण 5 गते सम्म। क्याम्पस प्रमुख आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस दमौली तनहुँ। विस्तृत जानकारीका लागि वेबसाइट www.adikavicampus.edu.np। आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस ब्यास 1 विज्ञान चौर तनहुँमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 0665900096, 98562-67097, 98562-28।

0: पीआरबीटी पुरुष 013-00-4570 पीआरबीटी 60-45-20-31 सीआरबीटी महिला 013-00-4569 पीआरबीटी 60-45-20-30
1: रामु खड्का को उत्कृष्ट लय र निरख बीसी मार्मिक को उत्कृष्ट शब्द सृजना भित्र विमल अधिकारी अनि कल्पना पौडेल को सशक्त म्यूजिक भिडियो अभिनय को साथ में नवीनतम लोक सांगीतिक को शैली आँखा झिकेर लै जाऊ
0: भावना म्यूजिक सोल्युसन द्वारा अब बजार में सलाह र सुझाव का लागि संपर्क 98480-99-749 98-448-22-307
2: आयो।

भर्ना खुल्यो गण्डकी प्रदेशको एक अग्रणी उच्च शैक्षिक सामुदायिक संस्था QAA मान्यता प्राप्त आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस दमौली तनहुँमा शैक्षिक सत्र 2083-84 को लागि वार्षिक सेमेस्टर प्रणाली तर्फ बीए बीबीएस र बीएड नेपाली अंग्रेजी गणित र विज्ञान र सेमेस्टर प्रणाली तर्फ बीबीए र बीआईसीटी मा अध्ययन गर्न चाहने इच्छुक विद्यार्थीहरूले समयमा नै प्रवेश परीक्षा इन्ट्रान्स फार्म भरी आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहुन सूचित गरिन्छ। बीबीए को प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने मिति 2083 श्रावण 19 गते सम्म। बीबीए को प्रवेश परीक्षा मिति 2083 श्रावण 23 गते बिहान 8 बजे। बीबीए को कक्षा सञ्चालन त्रिवि अनुसार। बीबीए को जम्मा सिट संख्या 66 जना। बीआईसीटी को प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने मिति 2083 श्रावण 25 गते सम्म। बीआईसीटी को प्रवेश परीक्षा मिति 2083 भाद्र 5 गते दिउँसो 1 बजे। बीआईसीटी को कक्षा सञ्चालन 2083 भाद्र 31 गते देखि। बीआईसीटी को जम्मा सिट संख्या 33 जना। बीए बीबीएस र बीएड को प्रवेश परीक्षा फारम 2083 असार 24 गते सम्म। बीए बीबीएस र बीएड को प्रवेश परीक्षा 2083 असार 25 गते बिहान 8 बजे। बीए बीबीएस र बीएड को कक्षा सञ्चालन 2083 श्रावण 5 गते सम्म। क्याम्पस प्रमुख आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस दमौली तनहुँ। विस्तृत जानकारीका लागि वेबसाइट www.adikavicampus.edu.np। आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस व्यासेक विज्ञान चौर तनहुँमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 0665900096, 98562-67097, 98562-528।

भर्ना खुल्यो भर्ना खुल्यो भर्ना खुल्यो गण्डकी प्रदेशको एक अग्रणी उच्च शैक्षिक सामुदायिक संस्था QAA मान्यता प्राप्त आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस दमौली तनहुँमा शैक्षिक सत्र 2083-84 को लागि वार्षिक सेमेस्टर प्रणाली तर्फ बीए बीबीएस र बीएड नेपाली अंग्रेजी गणित र विज्ञान र सेमेस्टर प्रणाली तर्फ बीबीए र बीआईसीटी मा अध्ययन गर्न चाहने इच्छुक विद्यार्थीहरूले समयमा नै प्रवेश परीक्षा इन्ट्रान्स फार्म भरी आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहुन सूचित गरिन्छ। बीबीए को प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने मिति 2083 श्रावण 19 गते सम्म। बीबीए को प्रवेश परीक्षा मिति 2083 श्रावण 23 गते बिहान 8 बजे। बीबीए को कक्षा सञ्चालन त्रिवि अनुसार। बीबीए को जम्मा सिट संख्या 66 जना। बीआईसीटी को प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने मिति 2083 श्रावण 25 गते सम्म। बीआईसीटी को प्रवेश परीक्षा मिति 2083 भाद्र 5 गते दिउँसो 1 बजे। बीआईसीटी को कक्षा सञ्चालन 2083 भाद्र 31 गते देखि। बीआईसीटी को जम्मा सिट संख्या 33 जना। बीए बीबीएस र बीएड को प्रवेश परीक्षा फारम 2083 असार 24 गते सम्म। बीए बीबीएस र बीएड को प्रवेश परीक्षा 2083 असार 25 गते बिहान 8 बजे। बीए बीबीएस र बीएड को कक्षा सञ्चालन 2083 श्रावण 5 गते सम्म। क्याम्पस प्रमुख आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस दमौली तनाव। विस्तृत जानकारीका लागि वेबसाइट www.adikavicampus.edu.np। आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस व्यासेक विज्ञान चौर तनहुँमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 0665900096, 98562-67097, 98562-28।

जब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

0: ओली एफएम 94.2 समुदाय को आवाज।
1: भर्ना खुल्यो गण्डकी प्रदेशको एक अग्रणी उच्च शैक्षिक सामुदायिक संस्था QAA मान्यता प्राप्त आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस दमौली तनहुँमा शैक्षिक सत्र 2083-84 को लागि वार्षिक सेमेस्टर प्रणाली तर्फ बीए बीबीएस र बीएड नेपाली अङ्ग्रेजी गणित र विज्ञान र सेमेस्टर प्रणाली तर्फ बीबीए र बीआईसीटी मा अध्ययन गर्न चाहने इच्छुक विद्यार्थीहरूले समयमा नै प्रवेश परीक्षा इन्ट्रान्स फार्म भरी आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहुन सूचित गरिन्छ। बीबीए को प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने मिति 2083 श्रावण 19 गते सम्म। बीबीए को प्रवेश परीक्षा मिति 2083 श्रावण 23 गते बिहान 8 बजे। बीबीए को कक्षा सञ्चालन त्रिवी अनुसार। बीबीए को जम्मा सिट संख्या 66 जना। बीआईसीटी को प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने मिति 2083 श्रावण 25 गते सम्म। बीआईसीटी को प्रवेश परीक्षा मिति 2083 भाद्र 5 गते दिउँसो 1 बजे। बीआईसीटी को कक्षा सञ्चालन 2083 भाद्र 31 गतेदेखि। बीआईसीटी को जम्मा सिट संख्या 33 जना। बीए बीबीएस र बीएड को प्रवेश परीक्षा फारम 2083 असार 24 गते सम्म। बीए बीबीएस र बीएड को प्रवेश परीक्षा 2083 असार 25 गते बिहान 8 बजे। बीए बीबीएस र बीएड को कक्षा सञ्चालन 2083 श्रावण 5 गते सम्म। क्याम्पस प्रमुख आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस दमौली तनहुँ। विस्तृत जानकारीका लागि वेबसाइट www.adikavicampus.edu.np। आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस व्यासेक विज्ञान चौर तनहुँमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 0665900096, 98562-67097, 98562-2528।

Willingo festivity offer. Our pound host 1 वर्ष को 200 Mbps internet TV साथ में dual band router Nokia Beacon 1.1 mesh router र net TV set box मात्र ₹12,000 प्रति महीना में. शर्तहरु लागू हुने छन्. छिटो भनेकै Willingo.

भर्ना खुल्यो भर्ना खुल्यो भर्ना खुल्यो गण्डकी प्रदेशको एक अग्रणी उच्च शैक्षिक सामुदायिक संस्था QAA मान्यता प्राप्त आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस दमौली तनहुँमा शैक्षिक सत्र 2083-84 को लागि वार्षिक सेमेस्टर प्रणाली तर्फ बीए बीबीएस र बीएड नेपाली अङ्ग्रेजी गणित र विज्ञान र सेमेस्टर प्रणाली तर्फ बीबीए र बीआईसीटी मा अध्ययन गर्न चाहने इच्छुक विद्यार्थीहरूले समयमा नै प्रवेश परीक्षा इन्ट्रान्स फार्म भरी आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नु हुन सूचित गरिन्छ। बीबीए को प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने मिति 2083 श्रावण 19 गते सम्म। बीबीए को प्रवेश परीक्षा मिति 2083 श्रावण 23 गते बिहान 8 बजे। बीबीए को कक्षा सञ्चालन त्रिवी अनुसार। बीबीए को जम्मा सिट संख्या 66 जना। बीआईसीटी को प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने मिति 2083 श्रावण 25 गते सम्म। बीआईसीटी को प्रवेश परीक्षा मिति 2083 भाद्र 5 गते दिउँसो 1 बजे। बीआईसीटी को कक्षा सञ्चालन 2083 भाद्र 31 गतेदेखि। बीआईसीटी को जम्मा सिट संख्या 33 जना। बीए बीबीएस र बीएड को प्रवेश परीक्षा फारम 2083 असार 24 गते सम्म। बीए बीबीएस र बीएड को प्रवेश परीक्षा 2083 असार 25 गते बिहान 8 बजे। बीए बीबीएस र बीएड को कक्षा सञ्चालन 2083 श्रावण 5 गते सम्म। क्याम्पस प्रमुख आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस दमौली तनहुँ। विस्तृत जानकारीका लागि वेबसाइट www.adikavicampus.edu.np। आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस व्यास 1 विज्ञान चौर तनहुँमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 0665900096 98562097 98562428।

0: World Inco festivity offer. Our pound host 1 वर्ष को 200 Mbps internet TV साथ में dual band router Nokia Beacon 1.1 mesh router और net TV set up box मात्र रु 12 से प्रति महीना में सर्तहरु लागू होने चाहिए। छिटो बने गई World Inc.
1: भर्ना खुल्यो गण्डकी प्रदेशको एक अग्रणी उच्च शैक्षिक सामुदायिक संस्था QAA मान्यता प्राप्त आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस दमौली तनहुँमा शैक्षिक सत्र 2083-84 को लागि वार्षिक सेमेस्टर प्रणाली तर्फ बीए बीबीएस र बीएड नेपाली अङ्ग्रेजी गणित र विज्ञान र सेमेस्टर प्रणाली तर्फ बीबीए र बीआईसीटी मा अध्ययन गर्न चाहने इच्छुक विद्यार्थीहरूले समयमा नै प्रवेश परीक्षा इन्ट्रान्स फार्म भरी आफ्नो सिट सुरक्षित गर्नुहुन सूचित गरिन्छ। बीबीए को प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने मिति 2083 श्रावण 19 गते सम्म। बीबीए को प्रवेश परीक्षा मिति 2083 श्रावण 23 गते बिहान 8 बजे। बीबीए को कक्षा सञ्चालन त्रिवी अनुसार। बीबीए को जम्मा सिट संख्या 66 जना। बीआईसीटी को प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम बुझाउने मिति 2083 श्रावण 25 गते सम्म। बीआईसीटी को प्रवेश परीक्षा मिति 2083 भाद्र 5 गते दिउँसो 1 बजे। बीआईसीटी को कक्षा सञ्चालन 2083 भाद्र 31 गते देखि। बीआईसीटी को जम्मा सिट संख्या 33 जना। बीए बीबीएस र बीएड को प्रवेश परीक्षा फारम 2083 असार 24 गते सम्म। बीए बीबीएस र बीएड को प्रवेश परीक्षा 2083 असार 25 गते बिहान 8 बजे। बीए बीबीएस र बीएड को कक्षा सञ्चालन 2083 श्रावण 5 गते सम्म। क्याम्पस प्रमुख आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस दमौली तनहुँ। विस्तृत जानकारीका लागि वेबसाइट www.adikavicampus.edu.np। आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस व्यासेक विज्ञान चौर तनहुँमा सम्पर्क राख्नु होला। सम्पर्क नम्बर 0665900096, 98562-67097, 98562-2528।